ज्ञानशक्ति अभिरामिदायी शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम आदिशक्ति ज्ञानशक्ति अभिराम